0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जोड़न बीमारी او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

दाह बर सही दो अच्छा बने बिल्कुल तेरे जी ना खा मखा सलोम बोल बने के भी अच्छा जी बेची अस्सलाम वालेकुम गुड गमा दा हो सुबह जुपर तारीखान गलाई दाई सर आगे ये बिल्कुल ठीक ठाक बेची डब्बा डब्बा में पानी तारीखान पोलों की रानी अच्छा जी डेरा मना ना

हाँ जी सही बिल्कुल संदर है चिकन दूर वही। अच्छा जी बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल मैसेज करो डेटा मन्ना बिल्कुल सॉन्ग किसा मौत मेलशी बिल्कुल सॉन्ग सब लिखा। अच्छा जी देने लो बल्दा ची सबोना सबोना हो बिल्कुल इस्लामिक बिल्कुल तो पुस्तना की सबोना बा इस्लामिक शू भी बिल्कुल सबोना इस्लामिक शू भी जगह जी सबोना ये कम हर हराम दे नो सबुना हो बिल्कुल इस्लामिक शुकम देशु भी ठीक छो तर 10 मोहर्रम हराम पर ठीक छो।

अच्छा जी सही, अच्छा जी वही कहना चाहिए सब फ्रेंड को सलाम। अरे वजीरे जनकाई स्टार्ट के में तीन बार काल मिलाओ शुहार टेन दे नखड़ा। अच्छा अच्छा बस दाहो पतन लगी जो खैर ब्याह ट्राई कवाली शेप 09272912921 ने बिल्कुल कॉल चुकम दे कवाले शे ठीक शुआ डेरा मने ना डॉक्टर इजा मैसेज कवाले कसी काल बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सो खबर की किम जरा सो खबर की तारा खान खबर की करकना तारा खान पर खेर उगले करकना सरंगे तो से शे आवाज दे कटकी जी। हेलो आवाज दे कटकी जी, आवाज दे देर ज्यादा स्लो दाए ओ कटकी जी। हाँ खजी दोबारा चुकम दे कॉलो के ढेर मन ना आवाज दे देर ज्यादा स्लो हो आवाज दे कला कटके दा। हाँ

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

जी जनाब बिल्कुल। नेक्स्ट भाई जिमी क्रिटर जी, हाय माय फेवरेट स्वीट भाई जानी फॉर यू, इतने प्यारे और हसीन हो जितना सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने की भी हद होती है कितना सोचा जा सकता है, जरा बराबर सोचा जा सकता है, ठीक है तक थोड़ी ऐसा लश क्यों नहीं सोच विचार यो जहान मानना क्यूटर जी खानी स्वीट सिस्टर जानी दे तो सिदोरा मीना इज्जत इज्जत मनीष ऐसा। नेक्स्ट वैसे क्यूटर रोशि खान ये गाना फार मेरे वफादार फ्रेंड आसमा शिवम, यू कहता है तेरी याद से बेहबर हूँ मैं, मेरी आंखों से कुछ मेरी रात किसी गुजरती है।

0: लग्नासाठी
1: आमीन सुम आमीन आला पक्ते सुती जी बिल्कुल जी तो है यो जहान मन ना दे मैसेज का बोलो वही चीज रोशी हाँ थैंक यू प्रोग्राम और वो मैं छोटी अक्सर राम का रैक छे छोटी अक्सर थैंक यू सो वेरी मच बिल्कुल रोशी हाँ प्रोग्राम और वे ओके जी नेक्स्ट टाइम मैसेज करेगा ना होता है मैसेज में जब पोइनर शुरू आज समझ ली गली दे

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: हम और शराते हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज़ जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

हम और शराबे हल्की मौसी की और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

0: इस्तेमाल कीजिए। हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा फेस
1: वॉश,
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा फेस वॉश द विटामिन सी। ओहो दस तारीफ मुख्ताज ने देर जबरदस्त रिजल्ट दिल गए। चिकला तुसे इस्तेमाल की हुज़ैफ़ा कंपनी विटामिन सी फेस वॉश। माशाल्लाह जना बिल्कुल तुसे तो देर जीव तो खलक हुए चे। माशाल्लाह माशाल्लाह शिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश ढेर जबरदस्त और अलग क्वालिटी शो देर तमिल जेड कलर डबी से तेल देर का कचेरी दिसार न विष्टोन वकील पसार न तम की दिसार विष्टोन वश दवल लो यवल गण अवल मजबूत अवल गुण खुशली कवल चमकदार कवल युगुण नोजनाव रसा। हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेलो का इलाज उदे इलाज है द हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल सरा दे तुसे दे विष्टो ने इलाज बिल्कुल बर वक्त इलाज वगे कि दे गंज अपन नखलुस दे गंजी तुब नखलुस कुड़ी भी न सुख न देर तभी आए वक्त सरा इलाज बचा।

धवन वेमेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान वेमेन शिकस्त वर्कड़े भारत टीम ओवल बैटिंग कौलूसरा मकर्रा और केशपग विकेट पर नुकसान न्यूसल अव्या रन चुटकड़ द भारत तरफ न समर्थिया तशपित कप्तान हरमनप्रीत केशपग देश और राजा घोष सलोर देश रन चुटकड़ पाकिस्तान तरफ न फातमा सन और सादिया इकबाल द्वित विकेट हासिल करवे द पाकिस्तान जनना पूरा टीम ओल असम और के यूसल शपक रन चुड़ोल बांधे आउट शविदे पाकिस्तान तरफ न मुनीबा अली यूसल रन चुड़कड़ी दी वॉलीबॉल रफ्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी दल अफवाड़ो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निजाम के घट तब्दीलाई करेगा रिवायती ए बी सी और डी कैटेगरी खत्म करेगी द पजाई फॉर्मेट बनियाद बांधे पिंजा मुख्तलिफ ट्रिक्स जुड़कड़ी दी द पीसीबी तरमहाल दर्जे ट्रैक ए बी टेस्ट वनडे लोबवाड़ी लपारे जोड़ शविदे तीसरा ट्रैक बी सी के बाद वनडे और टी ट्वेंटी लोबवाड़ी शामिल कोली द पीसीबी तरमहा ट्रैक सी पहास तो टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट फ्रेंचाइज लीग लुबोन को लोबवाड़ी लपारे जोड़कड़ी शविदे द पीसीबी तरमहा हरियो कैटेगरी के नोर दुआ दन सतह जोड़ शविदे चाहे पजरियाबा लोबवाड़ो कर करते गए बनियाद बंदी तरक्की या तनजली मुमकिन हुई मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तरमहा तेरह सलविश्त घंटों पर दौरान करकल की मारवाद बनो और टांग होश ज्यादातर इलाकों के मौसम ऊंचा गर्म हो और जिन इलाकों की पासमान खाल खाल वे जवेद मौसमियात महकमे लखवाली शिविर चे करकल की मारवाद बनो और टांग होश इलाकों की सबा दबरान वरी दो इम्कान दे दो मौसमियात महकमे तरमहा करकल की मारवाद बनो और टांग होश सिम के ज्यादा न ज्यादा दर्जे खरत पगदेश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम ओविश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करी शवे और पहवा के दिन मई सुबह तेदेश फीसद उदा हुआ रफ्तार तक किलोमीटर यू घंटा रिकॉर्ड करे शवे दे ओले देसरा करक लगे मारवाद बनो और टांग होश सीम की बनवर सुबह सहर व मिनट द पास पिंज बजे सिरोही और महाम शपगिश्त मिनट द पास व बजे बप्रियोजी दउदे रेडियो अमन अटसी अश्वर्य चार नेटवर्क हम खबरों दनोर हम खबरों पर रेडियो अमन अटसी अश्वर्य चार नेटवर्क सरोसाई ओस्त न्यूज टीम सरा मात्रा का इजाजत पामान

हमारे हल्के मौसी की और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: तय दर सा नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।
1: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हो माह के डेरी ज्याते हारा बेवे नु दुमरा जर सिंगर टिक्षुले यह हो रेन हो रे माह हो माह के डेरो कपनोई क्रिक्री में सेमाल करल हो माते हिस रिजल्ट और फायदा न करारा और चिकला माँ उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्रिक्रीम राउडल नु माते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रजा गुलोनी हो रे जे हम जान द पारा राउडम इश्म क्रिक्रीम कतासो हम वाड़ो चिमुंगो पुंदे सफा सुत्रा और हाइस्तशी नयो जल जरूर इस्तेमाल कई इश्मा क्रेक क्रीम
2: सब पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी मगर इसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342 311 2292 पर

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी

मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: खासी चाहिँ मेसेजेस जरुर छ मलाई त के टाइम छ कम दे अगा बिल्कुल तकरीबन 10 मिनट पछि पडा ओली हदी गना मतलब
1: बिल्कुल टाइम छ अगा 17 मिनट पहुँच त
0: जी जी बिल्कुल बाहिर के भयो सुन प्ले के भी खजी

0: अच्छा जी, आई एम अमर वजीर फ्रॉम जमेल डेडिकेटेड टू रकीब भाई। पतुरश पाकी में स्पगमे तप जड़ा की पतुरश पाकी में स्पगमे तप जड़ा की विल जमा जनान का दर तगोरी नो सलाम प्रवाया थैंक यू मैसेज के वाले ममर वजीर यो जहान मलना और दीन अलबाम ये ची अगेन भी रेहान ओए तारिक भाई मोबाइल में रुखा साल और वैसे वैसे मो मैसेजेस वक्रल खजी बता दे बिल्कुल मैसेज दे गुलो दे मिशा मेल गुल खजी दीन अलवा नेक्स्ट मैसेज दस इज अ मैसेज लिखल ला क्लियर मैसेज न लिखल है वीर रेहान मैसेज कर दे जेरा मरना मैसेज को ले यो जहान बनना लश्क शान दे क्लियर मैसेज लिखा अगेन गुल्ले और खान मलक अल मसई फ्रॉम ककी सलाम एंड वेलकम टू द रकीब चाचू तारिक सर नियोमे वियाई छे दा कीमा ख्वाजा खबर दो छे खून दे मोता ये हो वका
1: जेके हम उर्दू के खड़े वा मुरी छिनियो खड़े ने
0: सही दिन अलावा तारिक भाई डेडिकेटेड फॉर गिर मलिका गिर मलिका था रानिया बाजी था। इस जिंदगी में अपने आप को खामोश रखना है, जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो और जो नहीं देता उसकी परवाह मत करो। कबूल है मैं छुटे खजी डेरा मन्ना थैंक यू वेलकम रकीब भाई एंड कंजूस माही आपको मैं वेलकम एंड माशाल्लाह तसु द्वारा वाइस डेरा नाइस दे राज मो थैंक्स फॉर नाइस डेडिकेशन में ग्रहण मलिका डेरा मनाना थैंक यू खजी मैसेज तो बीखी खत्म जी ना दा हो अच्छा जिंदगी तो जीना है मन थटक ब्याह मैसेज कर दे मन थटक डेरा मनाना और जो कोई इनका निश्चित नमूना विषय में कि जो कुछ मैसेजेस जी डिजियात और بالکل شامل بھائی کی خفا پشی کیا نا دیس پوئٹری فار رقیب بھائی نہ کوئی تنگ رہے گا نہ کوئی رنگ رہے گا جو میرے سنگ رہے گا وہ مس ملنگ رہے گا خجی دیر منا نہ جی بالکل بس شامل خجی بالکل باقی میسج شامل کا جی
1: رشتہ صحیح لگ رہا
0: بالکل بالکل باقی میسج حکم دے اشرف اور وی آئی کہنا چاہیے سنیحان مریض نے اچھا اچھا ہاں جی بالکل باقی میسج حکم دیکھنا زولش کی دماؤ کو باقی میسج باہر رات بھائی شامل کی

होके छे जागा बोरवा भाई जिसने के तो जीना है अहमद सठक राज भाई जो दल से चाल बसाल के ना छे तारिक सर सीधा के ना अरे इवा गाड़ी चबी मिंदल ऐसा या गाजोन सर संभव लक्ष्य दवा लाया वे छे छे ता खुदा से वा खुशी छे।

0: रहेगा
1: जी
0: रिश्ते भाई जी अगेन माई अटक रखी भाई था वेलकम एंड सलाम तारिक भाई
1: थैंक यू
0: मो फरमेश महापुरा के जी भाई प्ले का तो जमा जड़ो जमा जानिए जी बिल्कुल आखिर के यो सॉन्ग छे दा बिल्कुल तो सब लिखे जी यकीन जी टाइम सारा खत्म दा ओवर टाइम के चले जुशा सही यो जहान मैंने ना कोशिश करूँ कहना चाहिए तो से मैसेजेस चाहिए अगर पोते ने शी शाह बे ही चेरो ना पोते ने शी जके कहना चाहिए चाह मैसेजेस कड़ी भी नो कोशिश दाई भी चाहिए शामिल शी नेक्स्ट वाई कहना चाहिए वेलकम एंड सलाम वीरा एहाना एंड माही सर पोएट्री वाले एसएमएस राजलाला शामिल किया करे रकीब लाला को सलाम मी सुनिहान ओके जी सुनिहान थैंक यू सो वेरी मच बिल्कुल जी का तारिक ब्रू मैसेज शामिल हुई अजर शामिल हुई वाह खबर दशा बिल्कुल सही है तो मैसेजेस बलाशा नन हम रिकॉर्ड मत करे दशा यकीनी डेर मैसेजेस शामिल कर सही मंदे मैसेजेस शामिल जी नो यो जहान मन सही वही राज मामू